0: महिला हंगे इतु बिया नजर वरा साइडिया आरो ताहाना खाली बिया नजर नहिना भी तला फिजिकल बिहेवियर वरा माइकी के अनकंफर्टेबल करिया दिया हन इतु एक्ट तेरो सेक्सुअल हैरेसमेंट कोइना से अनवेलकम बिहेवियर अनकंफर्टेबल करिया दिया हन इतु सेक्सुअल हैरेसमेंट कोइना से इतु एक्ट ते आरो इतु खाली फिजिकल नहोय सेक्सुअल हैरेसमेंट तो खाली फिजिकल नहोय इतु दो वर्बल भी कथा बाजी वरा नलिवि non-verbal, online, or emotional harassment can be sexual harassment te ahi jai.
1: Alright. So now, itu posh act to kiki la jakare, kiki la workplaces te applicable ase.
0: Acha, ite posh act te do workplace koi na ase, aru itu workplace kwa do kam kriya la jaka, office building khali no hoi. Itu han do government office khan, private office, school khan de bhi ho pare, hospital, sports institute, transportation provided by the employer, na? Aru work-related travels khan de. Nulu ajikali do mohan online work from home inahan bishi pasu do itu online workspace khan kewi itu workplace kwase aro itu workplace to khali organized sector no it is both organized aro unorganized sector khan ke
1: so who is an aggrieved woman
0: itu aggrieved woman to kon ase gule do ekta mahila tai tala kam kuria la jaga de tai kam kurina thakibo pare nohilu bi tai ene kam kurina no hobo bi pare tai na jodi tai itu workplace te sexual harassment face korea se gule do tai do aggrieved woman ase aro itu dwelling place te gor khande na tala age to matter na kore tala status maintain na kore tai ekta domestic worker bi ho pare to itu de ta kam kora la jaga de tai sexual harassment face korea se gule do utu maiki do aggrieved woman ina koina

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों

0: को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Full potential of our time.
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
5: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज डेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोज डेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के

0: शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। जेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने 3री गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे

दू जाने ना वेल माय डियर फ्रेंड्स अपनी खान अजब प्रेम के गजब कहानी फिल्म रा गीत होनी थाकी छे आतिफ इस्लाम गुआ गीत और कोरस और मैं उम्मीद ग्रेस अपनी खान सब होने की ना एंजॉय करी थाकी ऐसे या तो अपनी खान लगा लिसनर आप भी चीज बुका चंद्रा भी को ऐसे बाल बाल गाना प्ले करी दिया करने एकदम सुपर बिग थैंक्स को किना तैयार लिखी ना बताई दिए से और टाइट टेंस कुरिया सु को किना लिखी दिए से अभिजीत देर इज नथिंग रॉन्ग इन टेंसिंग अवे विथ रिथम और किमान भाल से आज तो अलग इधर निशना हिदायली को किना गाना होनी बोले बेसि भाल लगे ना

दुर्गेश और फैमिली मेंबर्स मध्य प्रदेश पर भी कना होने के ना एंजॉय कर रहे हैं की दिया से थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज सपोज रेंगे रेडियो लिसनर्स ग्रुप भी इतना तक ट्यून इन कर के ना सो कोई ना जाने के ना आप पीछे खुशी पाई ऐसे बिरेन हंसी और हेनरी कंति मोम्बी पाली पत्थर पर भी कना होने के ना एंजॉय कर रहे हैं की दिए से और थैंक यू सो मच फॉर दैट टैरिफ तो माई डियर फ्रेंड्स जेड लास्ट गेट ही दिए से बिफोर आई गिव यू आउट दी माने अमी खान लगा न्यूज़ हेडलाइन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।

0: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एजू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसका बहुत बेसब्री से आपको इंतजार रहता है, क्योंकि यहां पर बजते हैं आपके पसंदीदा गीत। तो चलिए अब सिलसिला शुरू किया जाए। और किनका पसंदीदा सॉन्ग आज प्ले होने वाला है भाई, वेट कीजिएगा। अभी तो फिलहाल हम पहला गाना प्ले करने वाले हैं मेरठ कैन से। दिग्दर्शन और कविता गौड़ की फरमाइश है ये फिल्म बेताब का गाना, और सुनिए और एंजॉय कीजिए।

अगली फरमाइश आशिकी 2 से सलीम अख्तर और रेशमा बेगम अलीगढ़ से इन्होंने की है ये फरमाइश।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ताजी ताजी, महकी महकी, जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। और मेरा वाला सॉन्ग में अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट जो हम प्ले करने वाले हैं वो है किसकी? वो है अमरदीप कुमार, जालाकांडापुरम, सेलम, तमिलनाडु से। मुस्कान फिल्म का ये गाना।

और अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं किनकी, कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान ने हमसे फरमाइश की है। देखिए मैसेज इधर उधर नहीं गया, लेकिन आप इतने बेसब्रे हो जाते हैं कभी कभी कि आप बस मैसेज पे मैसेज करते चले जाते हो, और बहुत सारे मैसेजेस इतने आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि सबके मैसेज पूरे कर ले पढ़ के, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम क्या कर सकते हैं। हाँ जी, हम ही हैं, और हमारी मजबूरी तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना, हम कोशिश तो करते हैं कि आपकी सारी फरमाइश पूरी करें। चलिए ये आपकी फरमाइश का गाना, एंजॉय कीजिए इसे।

रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदर, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता ओखला संगम विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा नाम भी शामिल कर लीजिएगा, तो लीजिए, हमने आपका नाम भी शामिल कर लिया। इसके अलावा सौरभ अरनेजा, गुड्डू धाकर जी उज्जैन एमपी बेड़ावन गांव से भी हमें सुन रहे हैं और उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की किसी भी गाने में हमारा नाम ले लीजिएगा। तो लीजिए, आपका नाम ले लिया है हमने और आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे गीतों को इंजॉय कर रहे हैं, यही हमारे बहुत है। और अब यहाँ पर जो अगली रिक्वेस्ट प्ले करने जा रहे हैं वो है टिंकू की, वजीर बाग लखनऊ से इन्होंने रिक्वेस्ट की है इस गाने की।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम है 9868107070 पर आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। और अभी जिनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं वो कहां से मैसेज कर रहे हैं, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से इनका मैसेज आया है। और आइए हैं हरकिशन सिंह जी और इनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हमने प्ले कर दी है। देखिए आपका मैसेज शामिल कर दिया ना, तो प्लीज अब मत शिकायत कीजिएगा हमसे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मेरा वाला सॉन्ग में आपके पसंद के गीतों को हम यहां पर प्ले कर रहे हैं। तो यहां पर जो अगला गीत आने वाला है वो है राजीव रावत जिराकपुर पंजाब से, इन्होंने फरमाइश की है। लीजिए आपका पसंद का गीत, ये आ गया। और इसी के साथ ही दुर्गेश नानंगपुरे, राधेश्याम नानंगपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू, कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, जी हाँ, बहुत बहुत शुभ दोपहरिया। और आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए, ऐसा इन्होंने लिखा है, तो लीजिए आपका नाम भी हमने शामिल कर लिया।

और अब तो मेरे जाने का वक्त हो चला है, लेकिन हाँ जाते जाते एक लास्ट सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करते हुए जाऊंगी और बताऊंगी कौन आ रहा है आपके लिए। गीतिका उनियाल आ रही हैं छोटे उस्ताद लेकर के आपके लिए अगले प्रोग्राम को। और ये जो लास्ट रिक्वेस्ट मैं प्ले करने वाली हूँ, उनके बड़े से सारे सवालात होते हैं। गढ़वाली हो आप, कहाँ के हो आप? भाई मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तान की हूँ, और हिंदुस्तान में एक छोटी सी जगह है उत्तराखंड, वहाँ की हूँ। हाँ, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड से हैं। गीतिका उनियाल, जिनका नाम साफ बताता है कि ये उत्तराखंड की हैं, तो ये भी वही की है। रेणु भट्ट और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो हमारे आपके लिए प्रोग्राम्स यहाँ पर पेश करते हैं, वो भी उत्तराखंड से और भी अलग अलग जगहों से। उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, अलग अलग जगह से आपके लिए अलग अलग खुशबू लपेट करके और आपके पसंद के गीतों को, आपके पसंद के प्रोग्राम्स को यहाँ पर पेश करते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ, आपसे लेती हूँ विदा, फिर किसी दिन किसी रोज आपसे मिलती हूँ। और ये जो लास्ट सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो प्ले कर रही हूँ, ये है पुनीत ऋषिकेश की। तो मुझे लगता है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। फिर मिलेंगे किसी दिन किसी रोज, कहाँ पर? इसी मोड़ पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम छोटे उस्ताद। हम अपने आशियाने की बात करते हैं और हमारा आशियाना हमारे छोटे उस्तादों के बिना कहाँ मुकम्मल है। लेकिन हम यही कहते हैं कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा प्यारी होती है उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा काम करना होता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे घर के ये बच्चे हमारे अजीज़ हैं, हमारा दिल है, हमारे दिल का टुकड़ा है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके भविष्य के लिए, इनके वर्तमान के लिए लगातार काम करते रहें। और काम करते रहने के लिए जरूरी है सबसे पहले हम उन्हें अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, क्योंकि आज जो काम हम अपने बच्चों पर करेंगे कल चलकर जब वो खुले आसमान में अपने पर फैलाएंगे तो हम यही कहेंगे कि हाँ, हमारी कोशिश और हमारे प्रयासों की वजह से आज हमारे बच्चों ने एक मुकाम हासिल किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए और कहीं ना कहीं देश के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों के इंटरेस्ट को परख सकते हैं और फिर उन्हें एक एक्सपोजर देकर उड़ने का हौसला, जज्बा दे सकते हैं।

जनाब होगा वही जो आप चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं वो तभी मुकम्मल, तभी मुमकिन हो सकता है जब आप पूरी पूरी कोशिश और पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और कहते हैं कि प्रयास हमेशा सफल होते हैं और सफलता की कुंजी आपके अपने हाथों में है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसका श्रेय अपने माता पिता को देते हैं, अपने गुरुजनों को देते हैं, उन लोगों को देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए रास्ता बने। ठीक उसी तरह से आपके बच्चे जब आगे चल कर एक मुकाम हासिल करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हमारे माता पिता ने ना हमारे लिए एक सीढ़ी बना दी और उस सीढ़ी पर हम चलते चले गए। लेकिन वो सीढ़ी देना सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक है, हमें अपने बच्चे

की जिज्ञासाओं को जानना है, पहचानना है कि उसमें कौन सी वो एक ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है जिससे वो अपने उड़ान के परों को खोल सकता है। उड़ने के लिए परों की आवश्यकता होती है और परों की जो हमारे जीवन में महत्ता है वो हमारे माता पिता ही जानते हैं, क्योंकि वो हमें बचपन से देखते आए हैं। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी छोटी बड़ी हरकतों को हम अपनी आंखों में, अपने दिल में बसाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई एक नई हरकत करता है तो हम कहते हैं कि देखो देखो उसने ऐसा किया। और वक्त के साथ जब बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है, चलता चला जाता है, चाहे उसके वो पहले कदम हो, स्कूल का पहला दिन हो, क्लास में फर्स्ट आने, या फिर यूँ कह लीजिए क्लास में पहली बार जब उसे रिकग्निशन मिलता है, जब उसके लिए तारीफ़ें होती हैं और आप उन तारीफ़ों को बटोरते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मंथन करने लगते हैं कि आपके बच्चे में क्या कुछ ख़ास है और कैसे आप अपने बच्चे के लिए एक नया आयाम खोल सकते हैं। वैसे अक्सर ना हम माता पिता की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि हम जो जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते, हम अपने बच्चे को वही बनाना चाहते हैं, वही करवाना चाहते हैं जो हमें नहीं प्राप्त हुआ हो। लेकिन यकीन मानिए कि आपका बच्चा आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जीवन में नहीं आया है। और जैसा कि कहा जाता है कि हर बच्चे का, हर व्यक्ति का जीवन में आने का एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कभी कभी वो अपने खुद के लिए रास्ते चुनता है और कभी कभी माता पिता उन रास्तों में अपनी हामी भरते हैं और कहते हैं जाओ खोलो पर और उड़ जाओ। तो चांद तारे आप भर दीजिए अपने बच्चे की मुट्ठी में और कहिए कि वो कौन सा एक ऐसा तारा है जो उसे बेहद पसंद है। जिस भी तारे को वो चुनेगा ना, उसका आंकलन कीजिए और फिर अपने बच्चे को बताइए कि रास्ता तुम्हारे लिए एकदम सटीक है और हम तुम्हारे साथ हैं।

चांद तारे हम सभी की मुट्ठियों में, और बस हमें अपनी मुट्ठी को ना इतना ज्यादा खूबसूरत बनाना होगा कि उसमें से जब एक एक तारा महकता हुआ बाहर निकले तो आपको ये महसूस हो ये हर एक तारा मेरे बच्चे के लिए है। बिल्कुल, हर एक तारा आपके बच्चे के लिए, क्योंकि आपके बच्चे आपके सरताज हैं और आपके जो सरताज होते हैं उनको आप हमेशा चमकता दमकता हुआ देखना चाहते हैं। तो आपकी मुट्ठी पर निर्भर करता है कि कितनी देर तक आप उन सपनों को बंद करते हैं, और बंद करने के बाद जब खोलते हैं तो कैसे आपका बच्चा उस एक तारे को अपने हिस्से में ले आता है, यानी कि उस तारे को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। वैसे दुनिया में करने को तो बहुत कुछ है, हमारी तमन्नाएं बहुत सी हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अंततः आपका बच्चा जीवन में वही करता है जो आप चाहते हैं। एक बार मैंने किसी से पूछा कि आप इस मुकाम में पहुँच गए हैं, निश्चित रूप से आप अपने बच्चे को शायद वही बनाना चाहते होंगे जो इस वक्त आप कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल हैं और हर रूप में आपका सम्मान होता है सामाजिक तौर पर। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा मुझे जवाब दिया कि मैं अपने बच्चे को खुशहाल बनाना चाहता हूँ, जो उसे जीवन में बनना है वो निश्चित रूप से बन ही जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना, एक हैप्पी सोल बनाना, खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, जिस बच्चे के अंदर ये ताकत है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। ये बात तो उनकी मेरे दिल को छू गई और मैंने भी निश्चय किया कि जब भी मुझे कोई मिलेगा तो मैं उससे यही कहूँगी कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को हैप्पी सोल बनाना है। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, बहुत मुश्किलें हैं जनाब, हम तनाव में हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे तनाव में रहें। तो इसलिए सबसे पहले ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी खुशी में, हर छोटी बड़ी बात में खुशियां ढूंढने की आदत, इस आदत का शुमार हमें अपने बच्चों के अंदर करना होगा, और तभी उसके बाद सपनों को उजागर किया जा सकता है। अब सपनों को उजागर कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बदलते हुए वक्त में वक्त की नज़ाकत को समझ लें और ये जान लें कि आज क्या है, और थोड़े से दूरदर्शी हो जाएं तो आने वाला कल भी हम पहले से आँक सकते हैं, हम जान सकते हैं कि हमारा बच्चा आगे चलकर कैसे अपने लिए रास्ते चुन सकता है, क्योंकि हमने कहा कि वक्त है बदलता। हाजिर होते हैं आपके लिए आपके साथ इस शो पर जिसका नाम है छोटे उस्ताद।

जी आकाशवाणी के 90 साल बेमिसाल हैं, क्योंकि इसमें आप हैं, हम हैं और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। हर साल हर पल हम मिलते रहेंगे और अपनी इस दोस्ती को और भी ज्यादा पुख्ता करते रहेंगे। तो आकाशवाणी आपके लिए हर दम हर पल 24/7 है। अपने दिल के तार को हमारे दिल के तार से बस जोड़े रखिए। ये मोहब्बत यूं ही पुरखलूस मोहब्बत यूं ही पुख्ता बनी रहेगी और हम और आप यूं ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो हम आपसे आपके बच्चों के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हम ये ढूंढें कि हमारे बच्चे में क्या खास बात है। वैसे हर एक बच्चा खास है, लेकिन अगर प्रारंभिक वर्षों की बात की जाए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, स्कूल जाता है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे में आखिर क्या वो एक ऐसी खास बात है। कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़रूर होते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ना वो पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं, उसका आंकलन करते हैं और शायद वो समय ज़्यादा लगाए अपने लिए सही रास्ता चुनने में, लेकिन एनालिटिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उसका श्रेय भी ना आप ही को जाता है। मैंने कुछ माता पिता को हमेशा ऐसा देखा है कि वो किताबों से बाहर भी एक दुनिया, जो ये दुनिया है, ये जो किताब नुमा ज़िंदगी है, इसके साथ अपने बच्चों को रूबरू कराते हैं। और जब बच्चा किताबों की दुनिया के साथ साथ इस बाहर की दुनिया को देखता है, तो उसकी सोचने की शक्ति, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को जान पाता है छोटी सी ही उम्र में। अब हमें प्रारंभिक वर्षों में ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने बच्चे को ग्रो करने देना है, लेकिन उसको अलग अलग चीज़ों से जोड़ना है, यानी कि अलग अलग एक्सपोजर देना है, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, ड्रामा हो, पढ़ाई ही क्यों ना हो। आजकल देखिए किस तरह से बच्चे बहुत ही कम उम्र में कोडिंग और रोबोटिक्स सीखकर अपने लिए एआई दुनिया, यानी कि एआई दुनिया जिसकी हम अभी कल्पना कर रहे हैं, उस एआई दुनिया के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे पास ये मौका है कि हम स्कूल से ही अपने लिए एक रास्ता चुन सकें। तो हम माता पिता बस इतना कर सकते हैं कि जीवन के अलग अलग पहलुओं से अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं, उन्हें अलग अलग तरह का एक्सपोजर दे सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स जहाँ पर हम ड्राइंग पेंटिंग अपने बच्चों को करवाते थे, वो करवाते रहें, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, आज हमारे पास बहुत से नए आयाम हैं जहाँ हम कहीं बच्चे जो हैं रोबोटिक्स कोडिंग सीखते हैं, वहीं कहीं बच्चे बाहर निकलकर भाषणों में प्रतिभागी बनते हैं, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं। वो बच्चे जो बोल नहीं पाते, कम बोलते हैं, तो माता पिता सोचते हैं कि चलिए इनको ये एक्सपोजर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास जुड़मत हो सुजान। कभी कभी अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है ख़ास तौर पर प्रारंभिक वर्षों में कि हम अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ों से रूबरू कराएं और साथ ही साथ अलग अलग दुनिया में हो रही गतिविधियों से अवगत कराएं। अलग अलग म्यूजियम्स ले जाइए ना अपने बच्चों को, फिर देखिए कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक सोच बनेगी, एक सोच पर सपना बनेगी और फिर वो सपना कल चलकर हो सकता है कि आपके बच्चों की मंजिल बन जाए। और हर बच्चा यही सोचता है कि मैं ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सी प्रतिभा छुपी हुई है, बस उसे खंगालने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। बच्चा भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रयास करना है, आपको उसे रूबरू कराना है कि उसमें क्या कुछ खास है। और ऐसा करने के लिए आपको निरंतर अपने बच्चे के साथ बात करनी है। कभी कभी ना बात कर भी ना, जब हम अपने बच्चे को बार बार देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है, ये बार बार इसी काम को कर रहा है। अपने दोस्तों से बात कीजिए, आप एक्सपर्ट से बात कीजिए, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से। आपका बच्चा ऐसा कुछ करता है, क्या हम उसे इस रास्ते पर आगे मोटिवेट कर सकते हैं? अच्छा तरीका है ना, करके देखिएगा।

और समय मध्यम मध्यम धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ रहा है और आपके साथ हम हैं हरदम हर पल। और बच्चा ऐसा क्यों कहता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि हम उसे बार बार ये जता देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम में कुछ भी अच्छा नहीं। अगर आप ये पंक्ति, ये सेंटेंस घर में बोलते हैं तो आज से बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चा इस एक सेंटेंस, एक इस लाइन को सुनते सुनते जटिल हो जाता है और वो ये कहता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में कुछ भी खास नहीं है। जिस वक्त आप इन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि उस वक्त आप हार गए हैं, आपका बच्चा नहीं आ रहा, आप हार गए हैं, क्योंकि आपने उम्मीद करना छोड़ दिया है, आपने उम्मीद जगाना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आप बार बार यही कहते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। और वो भी यही कहता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ मुमकिन है दुनिया में जनाब, क्योंकि जब जब सपने देखे जाते हैं, जब जब ये उम्मीद जगाई जाती है, तब तब आपका बच्चा लाइफ में कुछ अच्छा करता है। और कहते हैं अप्रिसिएशन, जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा। जब बच्चा पहली बार लिखना शुरू करता है तो हम कहते हैं वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। इस आदत का ना शुमार हमें अपनी ज़िंदगी में करना होगा। जब जब बच्चा कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो आपको उसे अच्छा कहना होगा। यकीन मानिए, आपका सिर्फ ये कह देना कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसके अंदर उम्मीद जगाएगा और इस एक उम्मीद की वजह से उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जिसकी परिकल्पना, कल्पना आपने खुद भी नहीं की होगी, तो जिसकी कल्पना हम खुद भी नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। आपको निरंतर एक्सपोजर देना होगा।

अपने बच्चों को अलग अलग चीजों से अनुभूति करानी होगी, उसके सम्मुख उन चीजों को लाना होगा, घर के परिसर से बाहर निकालना होगा। भले ही आप अपने बच्चे को एक पार्क लेकर जाते हैं, लेकिन उस पार्क में जाने के बाद जब उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो उस जिज्ञासा की खोज में, उसके जवाब के खोज में कहीं ना कहीं वो खुद को खोज लेता है, यकीन मानिए। क्योंकि जब उसको जवाब मिलते हैं ना, तो उसको लगता है कि अगर ऐसा है तो इसके आगे और कैसा होगा, तो उसके आगे बेहतरीन होगा। लेकिन हमें बच्चों के सवालों पर जवाब देने की आदत होनी चाहिए, ना कि ये कह देना चुप हो जाओ बहुत सवाल पूछते हो। ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो जिज्ञासाएं और प्रश्न हैं, ये जननी है खोज की। तो खोज की जननी तभी उत्पन्न होगी जब हम अपने बच्चों के हर सवालों के जवाब देंगे। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा बेसब्र होते हैं, हर बात का जवाब जानना चाहते हैं। हर बात का हम जवाब दे पाएं ये मुमकिन तो नहीं, लेकिन हर जवाब के लिए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ये ज़रूर कह दें कि कभी ना शर्माना नहीं चाहिए, कभी कभी ना नौसिखिए की तरह भी आप जीवन में बहुत कुछ ईजाद कर लेते हैं। अगर किसी सवाल का जवाब आप नहीं जानते ना, तो आप उसे कहिए रुको मैं खोज कर लाता हूँ। सोचिए आप अपने बच्चे की खोज के साथ साथ स्वयं की भी खोज कर पाएंगे, और कुछ ऐसा खोज लेंगे जिससे आपका कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आपके बच्चे का कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। तो कभी अपने बच्चों को सवालों के जवाब देने से मना मत कीजिए। नहीं जानते हैं तो खोजिए, लेकिन उनके उत्तर ज़रूर दीजिए।

0: उड़ने दो परिंदों को शोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को शोक हवाओं में कि फिर लौट कर बचपन के जमाने नहीं आते। हम ये मानते हैं, जानते हैं कि हमारा जीवन बहुत खूबसूरत है, और इस जीवन का जो सबसे खूबसूरत पड़ाव है वो है हमारा बचपन। हम अपने बचपन में जो भी स्किल ईजाद करते हैं, यकीन मानिए ये बचपन के खेल सपने बन जाते हैं, और ये सपने कब हमारी उम्मीद बन जाएं, कब हमें उड़ान देने के लिए प्रेरित करें, हम खुद भी नहीं जानते। इसलिए अपने घर के बच्चों को हमें हमेशा निरंतर प्रेरित करना होगा जो भी वो इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ये उड़ान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनकी ये उड़ान देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही यंग इनोवेटर टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इनका नाम है हितिन गौतम। हितिन गौतम 11th क्लास में पढ़ते हैं और हाल ही में इन्हें पुरस्कृत किया गया है नेशनल साइंस सेंटर द्वारा आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल में। फर्स्ट प्राइज से ये अलंकृत किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हितिन गौतम का। हितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: Yes, thank you, ma'am. Good afternoon.
0: Good afternoon. और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपको नेशनल साइंस सेंटर द्वारा आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज दिया गया, तो ढेरों बधाइयाँ हमारी ओर से आपको।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं आप?
1: तो आई स्टडी इन क्लास 11th एंड आई लव साइंस, रोबोटिक्स एंड इनोवेशन, एंड आई एम फ्रॉम मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालिमाबाग दिल्ली।
0: बहुत खूब। अब आप हमें ये बताएं कि नेशनल साइंस सेंटर द्वारा इस आयोजन में, जिसका नाम इनोवेशन फेस्टिवल था, यहाँ आपने कौन सी ऐसी इनोवेशन की जिसकी वजह से आपको फर्स्ट प्राइज दिया गया?
1: मैंने अपने साइंस सेंटर के कॉम्पिटिशन में मैंने अपना रिसेंट जो लेटेस्ट मेरा इनोवेशन सोलर कार इनोवेशन मैंने अपना प्रेजेंट करा था
0: जी,
1: जो की लाइक जजेस वगैरह सबको बहुत पसंद आया एंड मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या खास बात थी आपकी इस इनोवेशन की, जैसे आपने बताया कि आपने सोलर कार इसका इजाद किया है?
1: यस, तो सो मेरी सोलर का इनोवेशन एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। मैंने सोचा कि लाइक पेट्रोल और डीजल का एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन खोजना चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बेटर हो। तो इसी सोच के साथ मैंने सोलर का प्रोजेक्ट पे काम शुरू करा था। मैंने आई थिंक एक साल पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था। तो मेरी सोलर कार सोलर एनर्जी से चलती है, जो क्लीन रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोलर एनर्जी का सोर्स है। ये फ्यूल की नीड को कम करने का संदेश देती है, और आई थिंक इन फ्यूचर में सोलर एनर्जी पेट्रोल और डीजल का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। इस प्रोजेक्ट का मतलब मेन मोटिव केवल एक मॉडल बनाना नहीं, बल्कि लो क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन के प्रति अवेयर करना है। इस प्रोजेक्ट में मैंने काफी कुछ सीखा, खुद सीखा, सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन स्किल्स के बारे में। आई थिंक कि छोटे से छोटे इनोवेशन भी काफी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: जी जी, बहुत अच्छी आपने बात यहाँ पर कही कि छोटे छोटे इनोवेशंस कब भविष्य बदल दें, देश का भविष्य बदल दें, हम खुद भी नहीं जानते। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर अगर गाड़ियाँ चलने लगेंगी तो हमारी बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनसे हम निदान पा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप हितिन, इनोवेशन साइंस इनोवेशन के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? घर से मोटिवेशन मिला या खुद से आप कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जिसकी वजह से आपको लगा कि मैं कुछ अलग हट के कर सकता हूँ, मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, तो वो कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको प्रेरित किया?
1: तो मेरी स्कूल में मेरी स्कूल की ATL टीम की वजह से मुझे इनोवेशन करने के बहुत हेल्प मिली। उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट करा, मेरी टीचर्स ने काफी मोटिवेट करा, मेंटर्स ने मोटिवेट करा, और स्पेशली मेरी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अलका कपूर मैम, उन्होंने मुझे काफी हेल्प करी और मोटिवेट करा कि, और उन्होंने मुझे गाइड भी करा कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, कैसे इनोवेशन करने हैं, और मैंने काफी सारे वेबिनार्स और यूट्यूब वीडियोस भी देखे थे ताकि मेरी नॉलेज अपडेट होती रहे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए किस तरह से ना स्कूल का करिकुलम अब बदल रहा है। आप सिर्फ किताबी बातों को आत्मसात नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल करने के बाद ही नए इनोवेशंस होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मोटिवेट हो रहे होंगे। हितिन, आप हमें बताएं कि इसके अलावा आपने पहले भी कुछ इनोवेशंस की हैं?
1: मैंने एक्चुअली लॉकडाउन टाइम से इनोवेशन स्टार्ट कर दिया जब मैं सिर्फ 9 साल का था। तो मेरा सबसे पहला इनोवेशन सोलर सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस है, जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करता है, ताकि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो सके। लाइक उस टाइम कोविड 6 फीट का था, 6 फीट है और मास्क है जरूरी, लाइक वो वाला। तो मैंने सोशल डिस्टेंसिंग में काफी फोकस करा था, क्योंकि क्राउडेड प्लेसेस में क्राउडेड प्लेसेस काफी सारी है हमारे देश में, तो और सोशल डिस्टेंसिंग इतनी आराम से फॉलो नहीं हो सकती। तो मैंने ऐसा डिवाइस बनाया ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए लोगों को।
0: मुझे लगता है कि आज के युग में भी हम चाहते हैं कि इन्फेक्शन, बीमारियों से जो उत्पन्न होता है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से, आपकी डिवाइस की मदद अब भी ली जा सकती है ना? कहीं ना कहीं वो मेडिकल इंडस्ट्री में एक कारगर साबित हो सकती है। और इसके अलावा कोई और इनोवेशन आपने की हो?
1: मैंने एक और इनोवेशन किया था, एंटीन एग्जिट डिवाइस, जो कि क्राउड मैनेजमेंट और डिवोटीज लाइक जो क्राउडेड रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनको हेल्प प्रोटेक्ट करने में मैंने एक डिवाइस बनाया था, ताकि कोई स्टैम्पेड वाली सिचुएशन आ ही ना सके। तो मेरा मतलब उसका मेन मोटिव ये था कि लोगों को सेव रखना और बेटर क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट मेरा एक्चुअली IIT दिल्ली में रिप्रेजेंट हो रखा है बहुत टाइम पहले।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे ये पता लगता है कि आपकी सोच क्या है। आप सबसे पहले परेशानियों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद ये खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए। और यही एक सच्चे इनोवेटर की पहचान है, जो हमेशा सलूशंस देता है। अच्छा, आप ये बताएं हितिन, आपने पास्ट में और भी हाल ही में इनोवेशन किए, आगे की आपके क्या प्लानिंग्स है, क्या करना चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ खोजना चाहते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो कि आपने देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित किया है? क्योंकि हम इनोवेटर्स यानी कि वो लोग जो इनोवेशन करते हैं, उनका मकसद यही रहता है कि आम जीवन को इजी बनाना। क्या सोचा है आपने?
1: तो इन फ्यूचर मेरा ड्रीम साइंटिस्ट, इंजीनियर और इनोवेटर बनना है। मैं ऐसे इनोवेशन करना चाहता हूँ जो सोसाइटी, कंट्री और एनवायरमेंट के लिए काफी यूजफुल हो।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम यही कहना चाहेंगे हितिन, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, और स्टूडेंट्स जो आपके साथ हैं, आपके दोस्त हैं, वो जो इनोवेशंस में जाना चाहते हैं, इनोवेशंस करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप?
1: तो मेरी खुद की सेइंग है, हर बच्चे के अंदर कुछ नया करने की क्षमता होती है।
0: जी,
1: अपने आइडियाज पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और कभी भी लर्निंग प्लीज बंद मत करिए। True innovation, we can change our society in a positive way.
0: वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको हितिन गौतम। आप यूं ही इनोवेशंस करते रहें, आप खुद भी अपने लिए एक मुकाम हासिल करें, अपने माता पिता के लिए, अपने स्कूल के लिए, वो संस्थान जहाँ से आप पढ़ाई करें, और देश हमेशा आपकी वजह से प्रसन्न होता रहे, हम सभी गौरवान्वित होते रहें, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: थैंक यू मैम। मैं FM रेडियो को भी रेनबो को भी एक्चुअली थैंक्स बोलना चाहता हूँ
0: जी,
1: उन्होंने मुझे अपनी इनोवेशन जर्नी के को लाइक शेयर करने का मौका दिया।
0: जी, और देखिए कितनी सुखद बात है कि कल आकाशवाणी को अपने 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी कि हम आकाशवाणी के 90 वर्ष मनाने जा रहे हैं कल 8 जून को। तो इस यात्रा में आप भी सम्मिलित हो गए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: थैंक यू, थैंक यू मैम।
0: तो ये थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हितिन गौतम, और इनकी यात्रा जो अभी शुरू हुई है निश्चित रूप से एक नया आकार लेगी, और हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो मुकाम हासिल करें जिसके लिए अग्रसर हैं, और इनकी वजह से हम हमेशा प्रसन्न रहें, क्योंकि यही तो चाहते हैं ना हमारे साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, कि पूरी दुनिया में, देश में हमेशा खुशहाली ही खुशहाली रहे। तो इनको इनके पर खोलने दीजिए, उड़ान भरने दीजिए, और आप भी अपने घरों में अपने बच्चों को रोके टोके बिल्कुल नहीं। कभी कभी बच्चे ना तोड़ फोड़ करते हैं और हमें कहते हैं कि जब देखो इनका काम है खिलौने लाओ और ये तोड़कर

बाहर अलग कर देती हूँ। यकीन मानिए, जिज्ञासा है खिलौने को तोड़कर अंदर देखने की कि इसके अंदर है क्या, कैसे जुड़ा है, क्या कुछ इसमें है, खुला है, कैसे इसको दोबारा जोड़ा जा सकता है।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, और छोटे उस्ताद में आज आपके घरों के, यानी कि आपके घरों में उन नन्हे परिंदों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कल चलकर देश का भविष्य बनेंगे, देश का गौरव बनेंगे, आपके घर का गौरव बनेंगे, और आप फख्र से कहेंगे कि हम इनके माता पिता हैं। और माता पिता होने का फर्ज सिर्फ ये कहना भर नहीं कि हमारा बच्चा आज ये है, माता पिता होने का फर्ज यहाँ से शुरू होता है, यानी कि डगर यहाँ से शुरू होती है। जब एक नवजात दुनिया में आता है तो उसका पालन पोषण, खाना पीना, उसकी अच्छी पढ़ाई, और उससे उसकी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छा वैल्यू सिस्टम जो हम अपने घरों में बच्चों को देते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद एक जंग हमारी जिंदगियों में और शुरू होती है, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल, यानी कि उनका बेहतर फ्यूचर बनाना। अब फ्यूचर 12वीं के बाद तो बनता है जनाब, लेकिन प्रिपरेटरी यानी कि प्रारंभिक तौर पर शुरुआत स्कूल के दिनों से हो जाती है। अब सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ ये है कि हमारे पास समय नहीं है। बहुत से पेरेंट्स वर्किंग है, वर्किंग होने के चलते जब शाम को घर लौटते हैं तो इतने थक जाते हैं कि बच्चों से बात करने का समय भी नहीं निकाल पाते हैं। भले ही बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है, ट्यूटर है, बच्चे की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं, लेकिन पर्सनल टच खत्म हो चुका है जनाब। पर्सनल टच के लिए भी हमें समय निकालना पड़ता है। मैं आपसे ना बार बार इल्तजा करना चाहती हूँ कि आप ना जितना भी समय आपको मिलता है ना अपने घर में अपने बच्चों के साथ, उन्हें बार बार अपने गले से लगाइए, उन्हें चूमिए और अपने टच का उन्हें फील कराइए, क्योंकि एक बेहतर इंसान बनाना है। जब वो बच्चा जो आगे चलकर एक युवा बनेगा, देश का नागरिक बनेगा, बड़े बड़े मुकाम हासिल करेगा, बड़ी बड़ी

जिम्मेदारियों को निभाएगा उस वक्त वो टच जो है ना उसके साथ रहेगा। और वो टच यानी कि आपका स्पर्श क्यों जरूरी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका बच्चा है, आप उसे प्यार कर रहे हैं। वो स्पर्श ना बार बार याद दिलाता है कि मुझसे कहीं कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है, और क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझ पे बहुत भरोसा करता है, इसलिए जीवन में जो मुझे दो राह नजर आ रही हैं, एक सच्चाई की और एक झूठ की, मुझे हमेशा झूठ के रास्ते को छोड़ देना है, सत्य के रास्ते पर चलना है। क्योंकि अगर मैं झूठ के रास्ते चला तो वो जो स्पर्श था ना, जो आपने अपने बच्चों के साथ डेवलप किया था, एक स्पर्श के जरिए संस्कार दिए थे अपने बच्चों को, वो संस्कार टूट जाएंगे। तो इसलिए बार बार टच करते रहिए, अपने बच्चों को जोर से गले लगाइए, क्योंकि ये स्पर्श हमेशा उनके साथ रहेगा, जो उनको ये कहेगा कि तुम्हें हमेशा सच्चे मार्ग पर चलना है, क्योंकि किसी का प्यार यानी कि माता पिता का प्यार बार बार ये कह रहा है कि कभी भी कुछ गलत नहीं करना। अब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई ये कहे कि आपके बच्चे में ये परेशानी है, वो ये गलतियां करता है, शिकायतें लेके जब लोग आते हैं ना, तो उनसे अपने बच्चों की शिकायतें मत कीजिए वापस, उनको सुनिए। उसके बाद जब आपका बच्चा आपके साथ अकेला बैठा हो, उसे पूछिए कि क्या बात हुई थी और उसकी कितनी गलती थी। उसकी गलती सुनने के बाद उसे डांटिए मत, लेकिन उसको सही और गलत में फर्क करवाइए। फिर देखिए ना, ये जो एक्सपोजर आप दे रहे हैं, जिंदगी किताब नुमा जिंदगी, ये जो जिंदगी किताब है, जब आप रूबरू कराएंगे अपने बच्चों को, तो आपके बच्चे का जीवन कैसा सहल, कितना सीधा, कितना

0: चाय बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर,
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त गीतिका। ऑनियल प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद और छोटे उस्ताद में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों के इंटरेस्ट को जान सकते हैं और फिर उन्हें एक्सपोजर दे सकते हैं। पर सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि बच्चे के इंटरेस्ट को कैसे जाने। सबसे पहले अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहा है उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। देखें कि कौन सी एक ऐसी बात है जो बच्चा बार बार करता है, बार बार दोहराता है, और उसकी सकारात्मक ऊर्जा, उसकी पॉजिटिव एनर्जी किस काम में ज़्यादा लग रही है। और जिस काम को वो ज़्यादा करता है, इसका मतलब ये है कि आप उस तरफ अपने बच्चे के लिए अपना ध्यान आकर्षित कर उसके लिए नया रास्ता बना सकते हैं, खोज सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप उसका आने वाला भविष्य आसानी से बचपन से ही तय करने लगते हैं। वैसे बच्चों के मूड का तो क्या कहना, समय समय पर बदलता रहता है। जैसे हमारे दौर में मेरे दौर में ये हुआ करता था कि हम बचपन में पहले कुछ और बनना चाहते थे, फिर आगे कुछ और, फिर कुछ और जब बड़े हुए तो फिर कुछ और किया। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि बचपन की जो नींव है, बचपन की जो जड़ें हैं, वो हमारे आने वाले कल से जुड़ी हुई हैं। भले ही कितने ही फ्लक्चुएशंस क्यों ना हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम बचपन में करते हैं उसका सीधा रास्ता हमारे फ्यूचर तक जाता है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को समय समय पर अलग अलग एक्सपोजर्स दें। भले ही आप जब उसे 10 चीज़ें सिखाएंगे नहीं, उनमें से वो एक ही नई चीज़ को पिक करेगा, लेकिन जब वो 10 नई चीज़ें करेगा तो कहीं ना कहीं उसका सर्वांगीण यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और वो एक साथ 10 नई चीज़ों को सीख पाएगा। भले ही कहते हैं कि हम मास्टर एक ही कार्य में बनते हैं, तो जिस तरफ उसका रुझान होगा वो उस तरफ बढ़ेगा, उस तरफ कहते हैं कि आकर्षित होता चला जाएगा। और सबसे पहले आपसे एक इल्तिजा और है कि अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। इस बात से ना, इस आदत से हर माता पिता, देश भर के, दुनिया भर के माता पिता जूझ रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है और ऐसे में वो इतने केंद्रित हो गए हैं कि उन्हें दुनिया जहान में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं रहा है। तो हमें अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करना होगा और हमें उन्हें डिसीजन देने का मौका देना होगा। यानी कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसके लिए भी हम अपने बच्चों को अगर प्रेरित करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हो सकता है कि वो अपनी मनचाही राह खुद ढूंढ पाएं। तो ढूंढेंगे आप और हम मिलकर एक नई राह हमारे आने वाले भविष्य यानी कि बच्चों के लिए। बस थोड़ा सा प्रयास,

थोड़ी सी खुशी और उसके साथ साथ एक दूजे का साथ निभाने का वादा जो हरदम हर पल हम आकाशवाणी के माध्यम से आपसे करते आए हैं, और इस वादे के साथ ही तो पूरे 90 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं कल यानी कि 8 जून को। तो बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पर अपना ये चहिता प्रोग्राम, और इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और इस कार्यक्रम का आप पुनः प्रसारण सुन पाएंगे FM रेनबो पर।

0: FM Dragon Band.
1: 103 MHz.
0: News, music, and entertainment.
1: This is FM Dragon Band.
0: FM 103 MHz.
2: जी हाँ, अपना कन हुनी असे आकाशवाणी एफएम ट्रैकपन 110 MHz और हुनी ठगा सब बेलाक के स्वागत करे असे अमी खलना प्रोग्राम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम टे आई किना प्रोग्राम टे शामिल होबी और अपना खलना यादे लोगों टे जूरी किना गीत खान हुनी किना एंजॉय करा होबी और सबसे पहला टे अनित दिए से साटे पे साटा फिल्म की गीत गाए से किशोर कुमार और अनित पिंटो

लता मंगेशकर आरो किशोर कुमार लगा वास्ते रॉकी फिल्म अटनिले हुने थगा सब बेला गीत गीत करने म्यूजिक दिसे राहुल देव बर्मांड आरो लिरिक आनंद बख्शी आको दूसरा गीत न बजा गोटे अपना कलाम मैसेजेस कुनुबा पूरी दिए से सारी हजन कार्बी आंगलोंग प्रा अमी कलना रेगुलर लिसनर आरो रेगुलर टेक्स्टर चंद्रा टिमुंग प्रा गुड इवनिंग विश कुरी गिना लिखी गिना पताई से आरो लिखिया से अपनार पुरानी गीत लगा प्लेलिस्ट गाना खान हुनी गिना एंजॉय कुरा से कोई गिना लिखी गिना पताई से चंद्रा टिमुंग A very, very good evening to you too. Itia samay tibi aigina program tune in kuri gina saad di gina khali hunia hai noi gina likhi gina pathai di se jiha jisamte purani geet ase holi bhi itia luge jiman jon bhi likhi gina pathai se apna khan sab enjoy kuri gina hunia se to bisi bisi khushi ase koi gina janai di ase dusra message likhi gina pathai se bali pathar pra shikari rongfer romes patro bhaikan munda Jogendra Rongpi Tarkhan Sabbi good evening wish likhi gina patai se aro sat likhi ase gaan play kura maza lagise koi gina likhi gina patai ase shikari rongfer aro sati bilak a very good evening to all of you bisi khushi ase apnar khan bi tune in kuri gina ase sat di gina ase aro sat sat te git khan bi

0: FM 드래곤 밴. 뉴스, 뮤직, 엔터테인먼트. FM 103 메가헤르츠.
1: जी हाँ, आप नरखन हुनिया से आकाशवाणी एफ एम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज हुनी रगा सब बिलाग आप नरखन सब के आपको स्वागत करे से हिंदी फिल्मी गीत दैट इज पुरानी गीत. पुरानी गीत असे होली भी इतियालोगे जिमान जोन भी लिखी गिना पठाई से आप नरखन सब एन्जॉय करे से तो बेसी बेसी खुशी असे एन्जॉय करी था कि भी और 7 बजे तक 10 मिनट लगे प्रोग्राम जाए था कि बोले ऐसे अपना खान प्रोग्राम ते साथ दी था कि भी और गीत खान लोई की ना एन्जॉय करी था कि भी उन्हें रखा सब बिलाग प्रोग्राम आगे बढ़ाई दिया से और एक बार दूसरा गीत होनी बो मोहम्मद राफी और राज वसले लगा वास्ते फिल्म से हम किसी से कम नहीं फिल्म की गीत म्यूजिक दिसे राहुल देव बर्मन और लिरिक मजरूत सुल्तानपुरी.

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcis

0: लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kersiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।

0: शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।